0: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम, अमन का पैगाम, अमन का पैगाम।
1: यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क।
2: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
1: 88.4 FM।
3: Welcome to Radio Amon 88.4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the soul listeners of Radio Program 97.4 Pahadpur, Global FM 91 Dear Asmal Khan and Radio Aman 88.4. Now, three radio station aur ek awaz aur ye awaz hai Kesan Natural Pakistan ki. Ye awaz hai khubsurti ki. Ye awaz hai shifa ki. Ye awaz hai tandurusti ki. जितना हमारे रोज की तरह आज भी आपकी समातों की नजर सुपैर के चार बजते हैं और जनाब चार बज चुके हैं जनाब और चार बजते ही जनाब आप लोगों की खिदमत में आपके शहर के रेडियो के तवसल से आपके रेडियो रेडियो के आपके शहर के रेडियो की फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर आप टांक में मौजूद हैं तो आप सुन रहे होंगे 88.4 अमन रेडियो को डेर असमल खान में मौजूद हैं तो सुन रहे होंगे ग्लोबल एफएम 91 को और अगर पहाड़पुर में मौजूद हैं तो सुन रहे होंगे रेडियो पैगाम 97.4 को तो तीन रेडियो स्टेशन पर सुनने वाले तमाम सामीने के

के साथ ही सही लेकिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है क्योंकि जनाब दीगर होने वाली है जनाब। और जनाब जब जुमा के दिन की दीगर होती है यानी कि असर होती है जो सेकंड टाइम होता है तो जनाब घूमने घामने का है जनाब सैर सपाटे का और अपनी छुट्टी को खूबसूरत बनाने के ये लम्हे होते हैं। तो मेरी दुआएं जनाब और नेक तमन्नाएं आपके साथ है कि जुमा के दिन वैसे तो बरकतों वाला दिन है, फजीलतों वाला दिन है, रूह को पाक करने वाला दिन है क्योंकि इस दिन को फजीलत हासिल है दूसरे दिनों के ऊपर। और आपने जरूर इस चीज का ख्याल रखा होगा कि अगर ये दूसरे दिनों का सरदार है तो इसका प्रोटोकॉल भी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए जैसा कि इसका हक है। साफ सुथरे कपड़े, पाकीजगी, गुसल, सब कुछ सारे दिनों से बिल्कुल हटकर। जना मुझे कहते हैं खलील और आप लोगों के साथ जुमा की इस महफिल में आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। और टांक वालों के लिए आज खुशखबरी है मेरे पास। टांक वालों आखिर आप लोगों ने हमें मजबूर कर ही दिया कि हम एक दफा फिर से आप लोगों के लिए पूरा घंटा लेके आए। तो जनाब आपकी ढेर सारी मोहब्बतों का शुक्रिया जनाब जो आप लोगों ने हमें मैसेजेस करके हमें आपके दूसरे आरजे को यानी कि सबको पूरी टीम को आपने मैसेज करके हमें मजबूर किया कि हम आपको अपना पूरा घंटा वापस लौटा दें। तो जनाब टांक वालों को मुबारक हो, उनको पूरा घंटा मिल गया है आज से और वो हमारा शो जो है आधे घंटे के बाद कट नहीं होगा बल्कि पूरा घंटा सुनेंगे। अपनी मोहब्बतों से एक दफा फिर हमने आपको अपनी मोहब्बत से नवाज दिया है। अब आपने हमें अपनी कितनी मोहब्बतों से नवाजा है ये तो हमें सितंबर का महीना बताएगा। एनी हो बहुत शुक्रिया टांक वालों का। डेरा और पहाड़पुर के लोग तो अपने हैं और एक अरसे से केसन उनके साथ है और एक अरसे से उनका एतमाद केसन के साथ है लेकिन टांक वालों को भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, ढेर सारा शुक्रिया अदा करेंगे कि जिस कम वक्त में उन्होंने हमारी कंपनी के ऊपर एतमाद किया है, भरोसा किया है और बढ़ चढ़ कर हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं बल्कि बार बार खरीद रहे हैं। यही वजह है कि एक दफा फिर से हमने आप लोगों के लिए टांक में एक ऑफर शुरू की है। हाजी जरबत खान के पास यानी कि मंसूर चंद स्टोर के ऊपर आप जाएंगे और वहां पर खरीदारी करेंगे तो खरीदारी के ऊपर इस पहले थी 1000 की खरीदारी उसी की। लेकिन ये टांक वालों के लिए ऑफर है ठीक है जनाब और 2000 की खरीदारी के ऊपर आप लोगों के लिए 250 रुपए का एक गिफ्ट है। चाहे तो आप जाफरानी साबुन ले सकते हैं, चाहे तो ग्लूटर साबुन ले सकते हैं, चाहे तो आप परफ्यूम ले सकते हैं ठीक है। अब चाहे तो आप लोशन के दिन आने वाले हैं तो लोशन ले सकते हैं ठीक है। अब चाहे तो आप क्रैक रिलीफ क्रीम है हमारी जो एड़ियों को ठीक करने वाली क्रीम है यानी कि 250 रुपए की कोई भी प्रोडक्ट आप वहां से फ्री में हासिल कर सकते हैं जब आप 2000 की चीजें खरीदेंगे मंसूर जनरल स्टोर टांक। जनाब अक्सर हमें लगता है अक्सर जब हम में से बहुत सारे लोग 40 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी उम्र जो है निकल गई है और अब क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 37-38 साल की उम्र में जब आप जाते हैं तो आपकी दाढ़ी में स्पेशली जो है वो सफेद बाल आना शुरू हो जाते हैं। सर में तो थोड़ी देर बाद में आते हैं लेकिन 38-40 के करीब जो है आपके सफेद बाल आना शुरू हो जाते हैं। सफेद बाल जो होते हैं ना वो बुढ़ापे की सेकंड हैंड ही कह सकते हैं लेकिन बुढ़ापे की जो है वो निशानी होते हैं। और अक्सर लोग जब 40 साल की उम्र को पहुंचते हैं ना तो वो कहते हैं कि थक गए हैं, कुछ हासिल करना चाहते थे लेकिन हासिल नहीं कर सके हैं, कुछ बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं सके हैं और हिम्मत हार देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इतनी खूबसूरत बात बताने वाला हूं कि आज के बाद जब भी आप अब में से जब भी कोई 40 साल की उम्र को पहुंचेगा और अगर ये सोचेगा कि मैंने तो वक्त गवा दिया है, मेरा तो अच्छा वक्त चला गया है, लेकिन इस बात को जब याद करेंगे तो आपको हौसला मिलेगा। और वो कौन सा हौसला है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ज़मान हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब नबुव्वत मिलती है? 40 साल के बाद, यानी कि आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल गुजर चुके होते हैं और उसके बाद खुशहाली जो है

तेरे प्यार परीत दे मामले विच असा ताने ते बहुतान झलेन महदे खान झलेन। तेरी प्यार परीत दे मामले विच असा ताने ते बहुतान झलेन मैदा खान झलेन। सारी जिंदड़ी सूला वात आ गई असा जान ते कई तावान झलेन मैदा खान झलेन। तेरे प्यार परीत दे मामले विच असा ताने ते बहुतान झलेन मैदा खान झलेन। सारी जिंदड़ी सूला वात आ गई असा जान ते कई तावान झलेन मैदा खान झलेन। अरमान अरमान को गल पाके असा मूंज दे कई अरमान झलेन मैदा खान झलेन। तेरे प्यार तो सैफी थक पए हैं तेरे प्यार च बहु नुकसान झलेन मैदा खान झलेन। जिथा जिथा मेरी आवाज वही पई अमन की आवाज मुहब्बत की आवाज FM 88.4 जिला टांग की आवाज सराय की प्रोग्राम वसदे लोग गिन के तुहाडा अज दा मेज़बान तुहाडा भरा तुहाडा दोस्त अशरफ जोशी तुहाडी खिदमत च हाजिर।

मैसेज दे जरिए सारे प्रोग्राम को पसंद करने पे आदन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हां अमरेज पठान तो ताहिर शाकिर मेरे नाल हिन छोटे भतीजे मोहम्मद फैजान मोहम्मद अयान ते मोहम्मद सुभान उन नाल नाल अली रहमान प्यारे मेरा प्यारा पुत्र मोहम्मद शयान ते मोहम्मद अली ते अली ते नन्नी मुन्नी मेरी प्यारी भांजी महीन फातिमा परी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक इवें हसदा रखे आबाद रखे शाद रखे सही तो साथ है। गाना प्ले कर दियो सरकू अदील सावल दा काफी गैर हाजिर है मेरे भिरादिया अदील सावल दा गाना प्ले कर तो नौकरी देसु जरूर बिल जरूर प्ले करेसु अदील सावल दा गाना प्ले कर सोचा नहा सुन वाला सिर कुल गाना के अक्सर दोस्त गिला करे के गाना जरे तुस गाने के दरमियान जरे गुफ्तगु बिल्कुल जारी न रखी करो तो असाकू डस है कह दस सही असाको आखे गर मिठू तू मिस्त्री हबीबुल्ला खान दानिश खान शामिल खान ते इंशाल्लाह कोशिश रासी के गाने दरमियान जरे गुफ्तगु न रावे तो सिर कुल सुनो गाना आखिर ते सुनो इंजॉय द ट्रैक अदील सावल।

0: आपका अपना रेडियो रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।

रेडियो की लहरों पर बिखरती हुई मेरी आवाज हर धड़कते दिल तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम मेंडा अस्सलाम वालेकुम। खवातीनो हजरात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांक। आपका मेजबान अनसख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है। उम्मीद करता हूं आप तमाम सुनने वाले जहां कहीं भी होंगे सेहत वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। बिल्कुल समीन इकराम, जो बहने मेरे भाई मुझे जहां जहां से भी कहां कहां से भी सुन रहे हैं या सुन रही हैं, उनको वेलकम जी आयनू पखेर आखले सत बिस्मिल्ला सजना में नकी ठहरे नले ठहरे सारा हां ते सारे चैसू सोने अला तना। सो बिल्कुल जनाब चे सुम रहम पुख्तन मुंगदा प्रोग्राम और भी चीज सासु ठोलता हम द सेहत प्रोग्राम के हर खलें वायम सासु हम चेरे सेहत हवाले सरा सवाल भी या उस सासु हकीम से उन्हों तपोस कवल वाड़ो। बिल्कुल क्रान वार भी धुनको सासु मुंग सरा रबे तक कवेल सो पदी प्रोग्राम के 0319-55-23-404 बांधे। बिल्कुल जनाब, जो खामोश लिस्टर हमें सुनते हैं, बहने हैं, भाई हैं, अंकल हैं, आंटियां हैं, भांचे हैं, भतीजे हैं, चाहे जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से डेली 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पेश किया जाता है। सो बिल्कुल सामईन इकराम, इस शो में हम बात किया करते हैं सेहत के बारे में, चूंकि ये सेहत का प्रोग्राम है और अलशिफा दवाखाना यानी कि सेहत का खजाना है। और सो बिल्कुल सही, अगर आपके कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप हकीम मशकूर अहमद साहब से पूछना चाहते हैं, सो बिल्कुल जनाब आज के इस ऑन एयर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा होंगे सैयद मशकूर हकीम अहमद शाह साहब, और इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब भी देंगे। जो भी आपके सेहत के हवाले से सवाल होंगे, आप कोई मशवरा करना चाहते हैं हकीम साहब से, तो बिल्कुल आप वो भी कर सकते हैं। सो समीन टांक और गुर्द नवाह में रेडियो की आवाज सुनने वाले तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों और बहनों को एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से मेरा सलाम। बिल्कुल जनाब, आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम अंस अख्तर है और ये शो अलशिफा दवाखाने की खसूसी ताउन से पेश किया जाता है। सो बिल्कुल जनाब, सेहत है, बात हमारी होती है सेहत के बारे में जी। सेहत हजार नेमत, अगर आपकी सेहत ठीक है तो आपके जो आसाइशें हैं वो भी आपको मजे देंगी, लेकिन हकीकत यह है कि सेहत सिर्फ एक नेमत नहीं बल्कि जिंदगी की एक बुनियाद है। जब इंसान सेहतमंद होता है तो मेहनत करता है, रोजगार कमाता है, अपने बच्चों का ख्याल रखता है, अपने वालिदैन की खिदमत करता है, दोस्तों से मिलता है, खुशियां मनाता है और जिंदगी के खूबसूरत लम्हात से लुत्फंदोज होता है। लेकिन जब इंसान बीमार हो जाए तो सबसे पहले उसकी तवज्जो अपनी सेहत की तरफ जाती है। इसलिए जी आज इस खसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेहत की अहमियत, एहतियात, मुनासिब इलाज और रिवायती और देसी तरीका इलाज के बारे में, और इसी हवाले से आज हम आपको मुतारफ करवाएंगे आपके अपने शहर टांक में एक मारूफ नाम अलशिफा दवाखाना। समीन इकराम, टांक में बहुत सारे मालिजीन आए, बहुत सारे चले गए, लेकिन इस मरतबा जो आपके शहर टांक में अलशिफा दवाखाना के नाम से एक इदारा है, एक क्लिनिक है, एक मतब है, एक इलाजगाह है, जहां पर पिंडी इस्लामाबाद के बहुत ही काबिल हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब मौजूद होते हैं और मरीजों का चेकअप मुआयना करते हैं। सामीन इकराम, अलशिफा दवाखाना में रिवायती और देसी तरीका इलाज के हवाले से खिदमात फराहम की जाती हैं और इसी दवाखाने से वाबस्ता हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब। सामीन इकराम, हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब हिकमत और रिवायती तरीका इलाज के शोबे से वाबस्ता एक तजर्बाकार हकीम है, जिनका तिब में 28 से 30 साल का तजर्बा है, जिन्होंने

0: पर तो दी गांव सुना अच्छा
1: पर तो धनी है लगा
0: अरे आनी है ठीक आनी ना
1: नहीं पर तो धनी है लगा पुराने आनंद के
0: पुराने आप पुराने सुना अच्छा ना पुराने सुना अच्छा